हाय हाय ठंडा पानी भीगी मेरी जवानी, फिर क्यों जले मेरा तन, क्यों मैं हुई दीवानी। हाय रे अब मैं समझी

एंड किम टोटली एंजॉयड दैट वन. आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में आरे छोड़ जाता है. मान इज अ ट्रैवलर, ही कीप्स कमिंग एंड गोइंग, बट व्हाट डज ही लीव इन दिस लाइफ टाइम ऑन दिस रोडवे, दिस पाथवे, वंडरफुल मेमोरीज. लेट्स सी ट्रैम टाटी तारा ऑफ द एंड बालमी इनटू द सिंग्स भगवान्स चॉइस ब्लेसिंग्स टू ऑल द फोक्स एट आवर रोलिंग टायर इंपोर्टर्स लिमिटेड. सी ट्रैम टू यू गाइस. Heading to Felicity, let's say Sitaram to Jagi, Joan, Roshan, Bhagwan's Choice of Blessings, Gayatri, a happy, happy Sunday to you. Uncle Ralph, Auntie Zamina, the Ramnaths, enjoy.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स ऑफ 68 मेन रोड शगोनस ऑपोजिट द शगोनस मार्केट कॉल देम एट 6654103 फॉर ऑल योर गोल्ड सिल्वर डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स वेडिंग रिंग्स इयररिंग्स पेंडेंट्स एंड ट्रेडिशनल फिलिग्री आइटम कस्टम मेड ज्वेलरी बेरा स्पेशलिस्ट एंड ब्रांड नेम पेन्स फ्री एनग्रेविंग ऑन ऑल आइटम्स परचेस फोर जनरेशन सर्विंग द कम्युनिटी विद इंटेग्रिटी एंड प्राइड भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स Check us out on Facebook at R. Bhagwat and Sons Jewelers and on Instagram.
2: The incredible India Export right opposite the Centre of Excellence. Open daily from 10 a.m. to 8 p.m. Discover an amazing range of products from elegant bridal wear and sparkling jewellery to stylish footwear, exquisite furniture and authentic Indian cuisine. Experience the vibrant colours and rich flavours of India. All under one roof at the incredible India Expo. Don't miss out. It's your gateway to incredible finds.
3: Fab India Expo in Chaguanas is open every day from 11 a.m. to 9 p.m. Fresh containers have arrived with brand new stocks. Exciting new merchants have joined us, bringing a huge

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।